0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

निम ओ तस्क विश्वास याए बहमख झीस परमेश्वर झिगु नीति अजु चागु ज्यायाना दी धका आशायामा छा छा धासा वेकन न्याग्ले युक्कु दयालु जुयादी झीस दोंगु सान वेकल दयालु जुयादी झीस वेकया अपेक्षा पुवङके मफु बले वेकल दयालु जुयादी वेकल छित धैर्य यानादी अले दक्कल त धङ्गु ख परमेश्वर झित दुनुग्ल निसे मतिनायनादी झिस वेकल झित घौछी पट्टी निनी मतिनायनादी धका पलसा या फै छिगु जीवने गुली समस्या फेमाला चुङ्गुदु उकिया कारण छिगु प्रति परमेश्वर या मतिना स्पष्ट जुइगु ई न फु उगु इले छिट परमेश्वर या मतिनाया त स्वीकार्या थम धा परमेश्वर जित तस्क मतिनायै जी वया यो मचा ख अले धाठे हे वयागु मतिना छिगु नुग लुमुकी अले परमेश्वर छित वयागु मतिना त गु पाखे केनाबी धका पियासो सपन्या सुगु अध्यायु झिन नेगु पत्के धाटगुदु परमप्रभु छिमी परमेश्वर छनापदु वेकया बच फुमख वेकया छनाप तस्क लेता वेकल थगु प्रेम छन्त शान्ति बि अले छिगु कारण तत्तसल मेहा वेक तस्क लेताई परमेश्वर छिगु नीति तया तगु खुसी व आनन्द छिके जाके ब्यु छित परमेश्वर बियादिगो मतिना लुमङका न्याब्ले सुथ दना दिस वेकया नाप जु वेक छित यागु भी या त तानासो जी परमेश्वर या यो मच ख तका तस्ल स्वीकार्या अले वेकल छित वयागु मतिना केने थुकिया आशाया छा धासा छि थथे हे वया यो मच ख थौ बच निनादिगुनी छित परमेश्वर सुभावीमा जयमसी नियनमिपि छिमस नकतिन हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्कमा इफेक्ट जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जयमसी।